0: हेलो हेलो,
1: हेलो।
0: गुड मॉर्निंग मणिपुर दा तराम नो उपचरी
1: हेलो,
0: ताबीर अब्रा
1: यम तब न ताय साल ताबे
0: ताबीर अब्रा
1: आ खदी खदी यम तीन न ताजे ये सारा ही फोन तब जाइए ते हाइजर के फोन तब जाइए चल लें पुकम नाउरे मंगो में लें पुकम देगी सा
0: ले मैं पुकम देगी नाउरे अंगों हाई भी बकवा
1: आ सा
0: करी करम बा फिल्म के करी से तासी के
1: मचा खुलम दगी आइगम साम सकता कना जी वा खल द न से उबदो
0: होय होय
1: अतुन त जादे के सा
0: लाइ मयुम बंग का सरम न सेरिंग बा आइबम सैमसंग ना सेरंग बि सेसी वे बि दोइनि को
1: ता ताबि नि से अनि दंग हपसे के
0: या या हाय बिरो
1: कोई लें को कुम दगी लपा कुम का का दिरे लदुगा मागी लोइन बि तै न सकी तोम बि अदुगा रेडियो न tangai tabi wa mo pang pun tam ni jadi sa
0: hoi hoi isai kudol tam jari mayam pun tam ni nasi
1: ang seri sa

0: हेलो हेलो
1: हेलो सर,
0: गुड मॉर्निंग.
1: गुड मॉर्निंग सर.
0: ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯀꯣꯂꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯦ. ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯀꯩ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯁꯤꯒꯦ?
1: ꯁꯥꯔ, ꯂꯝꯖꯥꯎ ꯄꯨꯁꯔꯥꯝꯒꯤꯅꯦ.
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ,
1: ꯉꯥꯎꯔꯤ. ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯃꯂꯦ ꯅꯪꯅ ꯇꯧꯕ ꯁꯥꯔ, ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯁꯤꯒꯦ. ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯀꯋꯥ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯒꯤ ꯕꯤꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯣꯔꯣꯡ ꯁꯥꯔ.
0: ꯗꯤꯅꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗ?
1: ꯕꯤꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔ.
0: ꯕꯤꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔ. ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ, ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ. ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ. ꯈꯨꯔꯥꯏꯖꯝ ꯐꯨꯂꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ. ꯈꯨꯟꯖꯣꯏ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯃꯂꯥꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ.
1: ꯁꯥꯔ, ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯥ ꯀꯩꯁꯦ ꯁꯥꯔ,
0: ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ.

0: गीत के अनि सुब खुदोल दा कुमार सानु देगी गीत ममु तामिनसी
1: ये गुलशन फूल कलियां बहार वादियां ये मौसम खेत हरियाली पहाड़ बर्फ ये कायनात कुछ भी नहीं
2: कुछ भी नहीं
1: कुछ भी नहीं गरन में वो नहीं
2: वो है कौन
3: कप्तान साहब उस लड़की का कोई नाम तो होगा

दिमागी पारी मंगाल नाई नंगा लंबा खोरऊ मासु ताकरे दो सिग्ना मामलवा वांगले नसीदा लाई भक्ति न तंबीरम लबी मैं तेरी जनु मखाऊं गंभी आएगी वकल की अत्याद दी टिंग सिंग बगी नोंग थाग न टिंग लगा मंगल नहीं।

0: नत्थी, पले ही माँ की है माया था, पले ही माँ की माया था, पले ही मैं, पले, पले, पले ही माँ की माया था,
1: ना, शन भी मचाओ, नंगी खुशू थांगलेन, ऐन कंधे दुना, लाई माई तक तारे दो, ऐ, शिंगायो मंकनाने
0: ऐ ऐ शंभी मचाने
1: अधिति आयो नान पम्मया यशिदा करीगी सप्लेट तुनो नंगी पलेंबु कोगुनो
0: ऐ गोन नमदो हंगर नंग मई की जेक नमदे ऐ के याई बेलो
1: नंग अवागी लांजिंग पुरे
0: नते ऐ माई थीर वल्लान मीनी
1: यावा कलो इसेंगो नंग लांजिंग पुरेल नत्ते
0: नत्ते
1: लांजिंग पुरेल किंगुंगम नत्तरा
0: नत्ते इमागी येक नबड़ी शेमी मचाने ये लनाड़ा लंगोई चल लगा करा सुखमन वन्ना मागी आई भी चाय खबड़ी
1: करी नंग ना नंग ना पारी मागी
0: अशेम बड़े
1: करी नत्ते मधु मिनम बने
0: अशेम बड़े मागी इन लेटिंग लबा ठांगी तारी बसे मग मग ऐ कोई एक नबरी शिबी मचा ऐ कोई एक नबक लन पम्सी की तंजालो दुना ऐ नमागी आई भी चाय कबरे
1: आई नमागी आई भी चाय कबरे साई चंबी मचा
0: कंगी नंग नंग मागी मपन थोनी आई बकंगी ठेंठर गरो ऐ की आई भी लो दुना नपारी बक शक्तालो
1: ना
0: ऐ की आई भी लो ऐ की आई भी लो
1: mitamba nang nai gi par gi ai bi lok bak nang gi ai bi cha
0: pale pale pale nang gi nayat nak labani pale
1: kar ai ba
0: pal tho magi mapham da na cha na khut thadr bani pale
1: tho magi mapham da kar हटी नंग
0: माने माने पले सक पमक आऊंगा अंबिगी कोई खाद मितम लग लंजिल पुरे
1: करी
0: किंदू अंबनी
1: करी नती नती नती नती नंग आऊंगी तिंगो ही की बताए अरुण बलान पम नंग ना लंजिल पुरे महापु याई भी शाय कराई ना
0: पले बागिया थंगाक नबा ऐन मिनम किमे
1: नंग न मिनम बा
0: बात माय तेरे बलान पंदा शिन्ने कमोदा अमुक हलवाई रख लोई इप्रम मखोई दा ऐन शरी वस थारम
1: नते नते पारी करीगी है तो भागी पारी लंग ही ये सुकुई बसे पारी नंगी ये चंगलाओ तबुई पान खाऊरा हंग नगेर सही पागी पैरा तक जाता हरा रो इबार नंबर कौन का पारी पारी पारी
0: पत्थो न पारी ऐ न सो पत्थो नंग तबुंग आई जरक गसी दी न तंबाक ता या ताब पंचर
1: पारी
0: कया आद पिंचर
1: खुयुम लाइनिंग थाउ मसीरु करी नंदम कौ बगे
0: पंथो से से बतम ममक मैं तैनिंग थाउ कोलगी लिख फांगनी पले मागे मनल
1: पारी
0: शिनबियो को पले मगाई कोरो सिंगों कया नंगी पोरी तबो पले माने एक जर
1: पारी
0: खुदा पिपम कंग पले इमाम मैं तही नरमता पुवी खोको पंथो
1: पारी
0: पंथो
1: पारी
0: पंथो आई
1: पारी पहाड़ी

धन्यवाद मेडिना। नमस्कार श्रोताओं, मैं खुराइजम बेबी रोशनी आप सभी श्रोताओं का गीतमाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं और आप सुन पा रहे हैं 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित FM संगाई चैनल से।

आज सोमवार है श्रोताओं, और पहले की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम गाने नए पुराने। तो सुनते हैं ये पहला गीत, फिल्म का नाम है क्यों हो गया ना। आवाज़ दिया है साधना सरगम और उदित नारायण ने, गीतकार है जावेद अख्तर और संगीतकार है शंकर एहसान लॉय।

श्रोताओं, दूसरा गाना आपके लिए पेश है शोर फिल्म से। आवाज़ दिया है मुकेश और लता मंगेशकर ने, गीतकार है संतोष मिलिंद और संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आइए अब सुनते हैं एआर रहमान के संगीत निर्देशन में केएस चित्रा और एसपी बालासुब्रमण्यम के युगल स्वरों में एक गीत। फिल्म का नाम है रोजा। गीतकार है पीके मिश्रा।

श्रोताओं, आपने अभी ट्यून किया है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के FM संगाई चैनल से कार्यक्रम गाने नए पुराने, और मैं आपकी रेडियो सखी खुराइजम बीबी रोशनी। आइए अब सुनते हैं बाहुबली फिल्म से एक गीत। आवाज़ दिया है MM किरावानी और पलक मुछल ने, गीतकार है मनोज मुंतसिर और संगीतकार है MM किरावानी।

आइए अब सुनते हैं आपकी कसम फिल्म से किशोर कुमार के आवाज में एक गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी के हैं और सुरों से पिरोया है आरती बर्मन ने।

श्रोताओं, आपको कैसा लगा हमारा आज का यह कार्यक्रम? मन तो नहीं करता आप सबसे विदा लेने का, लेकिन घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है। बाद में 2:30 बजे आपसे फिर मिलेंगे फौजी भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में। मैं आज आप सब लोगों के लिए कार्यक्रम भूले बिसरे प्रस्तुत करूंगी, वो भी कंगला चैनल में। तो मेरा इंतजार कीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯗꯒꯤ ꯆꯤꯊꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ
1: ꯆꯤꯊꯤ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯅꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ
2: ꯃꯂꯥꯅꯁꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ
1: ꯍꯧꯁꯤ ꯃꯂꯥ
2: ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯁꯤ ꯅꯔꯥꯟ ꯀꯨꯟꯖꯤꯟ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯅꯤꯂꯀꯥꯟꯇꯒꯤ ꯆꯤꯊꯤꯅꯤ
1: ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯂꯥ ꯇꯥꯔꯁꯤ
2: ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯖꯔꯨꯕ ꯅꯛꯁꯤꯟꯅꯔꯨꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯀꯂꯝ ꯄꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯏꯊꯤꯜ ꯄꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
1: ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯋꯥꯍꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝꯗ ꯑꯃꯛꯄ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯖꯕ ꯇꯥꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯀꯂꯝ ꯄꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯛꯄꯤꯕ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯅꯦ ꯃꯂꯥ
2: ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ
1: ꯑꯗꯣꯝꯕꯨ ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ
2: ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯐꯤꯜꯝꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯕꯒꯨꯝꯅ ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯖꯅꯤꯡꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯨꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯒꯗꯒꯦ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯏꯅꯥꯎꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯉꯦꯟꯒꯤ ꯑꯇꯤꯌꯥ ꯇꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ
1: ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯅꯤꯂꯀꯥꯟꯇꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄꯗ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯕꯒꯨꯝ ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯇꯥꯖꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯃꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯈꯔ ꯋꯥꯅ ꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯡ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯀꯥꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯉꯥꯏꯕꯤꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯡ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯔꯤꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯈꯔ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯂꯒ ꯊꯥꯕꯅꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯊꯪ ꯃꯅꯥꯎ ꯀꯥꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯅꯤꯡꯏ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯡ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗ ꯉꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯇꯥꯅꯤꯡꯏ ꯄꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯉꯦꯟꯒꯤ ꯑꯇꯤꯌꯥ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯪꯗꯤ ꯉꯥꯏꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯤ
2: ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯆꯤꯇꯔꯟꯖꯟ ꯂꯩꯃꯄꯣꯛꯄꯝ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯒꯤꯅ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄ ꯆꯤꯊꯤꯅꯤ
1: ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯆꯤꯇꯔꯟꯖꯟꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯂꯥ
2: ꯇꯥꯃꯣꯃꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯆꯦꯃ ꯃꯂꯥ ꯅꯅꯥꯎꯅ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ
1: ꯏꯅꯥꯎ ꯆꯤꯇꯔꯟꯖꯟꯕꯨꯁꯨ ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ
2: ꯑꯁꯪꯕ ꯐꯥꯎꯅꯥꯅ ꯃꯥꯂꯪ ꯁꯥꯍꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯁꯪꯕ ꯐꯥꯎꯅꯥꯒꯤ ꯏꯊꯛ ꯏꯄꯣꯝ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯒꯗꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯨꯝꯒꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯆꯨꯔꯛꯇꯕꯅ ꯂꯩꯀ꯭ꯔꯛ ꯆꯠꯂꯕ ꯂꯧꯕꯨꯛꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯖꯔꯒ ꯇꯦꯡꯊꯥꯖꯔꯤꯕ ꯂꯧꯃꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯆꯤꯊꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ
1: ꯑꯁꯦꯡꯕꯅꯤ ꯆꯤꯇꯔꯟꯖꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯦ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯑꯁꯥꯕ ꯃꯩꯁꯥ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯊꯛ ꯂꯩꯈꯥ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯃꯝꯅ ꯃꯪꯂꯝꯕ ꯅꯣꯡꯅ ꯆꯨꯔꯝꯗꯅ ꯄꯥꯏꯈꯤꯕ ꯂꯧꯃꯤꯅ ꯀꯣꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯆꯤꯜ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯂꯧꯃꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯃꯅꯤꯃꯂꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯝꯒꯤ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯁꯨꯕꯤꯗꯨꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯄꯨꯃꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯧꯅꯤꯖꯔꯤ
2: ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯤꯁꯛꯅꯤ ꯅꯅꯥꯎ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯂꯔꯣꯏꯗꯕꯅ ꯇꯦꯟꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤ ꯍꌧꯈꯤꯕ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯇꯥꯡ 12 ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯆꯠꯂꯦ ꯆꯠꯂꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯥꯖꯍꯧꯏ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯌꯣꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯃꯔꯦꯜ ꯁꯤꯗꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯏꯃꯣꯏꯅꯨ ꯏꯃꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯑꯣꯏꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯣꯠꯐꯝ ꯐꯝꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯂꯤꯂꯥꯅꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯏꯃꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯗ ꯂꯣꯠꯂꯤꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯆꯩꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯇꯥꯕꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯈꯤ ꯀꯐꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯦꯊꯕꯤ ꯀꯧꯕꯤ ꯄꯣꯠꯐꯝ ꯐꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯋꯥꯅ ꯁꯦꯝꯖꯔꯛꯇꯨꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔꯒꯤ ꯊꯔꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯣꯏꯔꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯔꯗ ꯂꯤꯂꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯗ ताजरीबा एकोगी थमोइदा नुंगोन हंकी मियोइबा हैबसी असीबा मचा आंगतनी हैबसु निंशिंग हली लीला पुथोपीरीबा पुंबबुशु थमोइ सेंग न थागचरी लीला असी यूट्यूब टा थागत पीरा ऊ हाइन हाइजरी
1: इनाउगी थमोइ न पेंबीबा न हेनकीबना तेंतक तो न पाउदम जगे हायरगा मला तेंतक पदी ओइद्रे हाइजे बतार
2: अचुम्बनी
1: हौकीबा जुलाई गी तांग 12 नोमाइजिंग निमित छंगाई चैनल दा संदोक चखिबा लाइपा लुवांग ने इबा माइबम इशा कांत न पुथोक पा रेडियो लीला चले चले अदोम न थवाई ता न ताबिरम बसी गी दमकता नुंगाई बसु फौजै थागत बसु फोंगदोक चरी लीला गी समल पवारी लीला द सिजि नखिबो वहाई वता लीला गी प्लॉट कुप न पनबी दुना थंबिरकली बा अदोम गी वफम असी बुसु पुमन मकी मफम दा सोइदन पौदम जगे अदुगा लीला आसी यूट्यूब ता थागत पियु हाई बा अदु मतंगदी मतम न पुरक पु ओइरसनु हाइना थमजेगे
2: आकाशवाणी इम्फाल गी आर्काइव्स तगी मतम खरगी ममांग दा कुइरब मतम गी इशै सक्तम खर संदोपीखी अतै लेमहौरी बसिंगसु मखाताना अदुमक संदोपीरक उ हाइन हाइजरी
1: इसै सक्तम गी अरी बा रेकॉर्डिंग सिंग असिगी मरक तगी ब्रॉडकास्ट तौबगी क्वालिटी द लेरी बा रेकॉर्ड सिंग अमुक री ब्रॉडकास्ट तौदुना तहन भाई बसी आकाशवाणी इम्फाल गी सु अपामबने मरक मरक तसु मतांग साबे येंगदुना संदोखिबा अदोम न सुताबी होरीबा दुनी तुंगदसु अतै लेमहौरी बेसै सक्तम गी रेकॉर्डिंग सिंग असि सोइदन लानथोकतुना तहन जरके
2: एन जी रणबीर पोरमपा चुथेक तगी इविरक पसिथिय सियमु लखचरके
1: एन जी रणबीर ना करी करी हाइबिरक पंगसि दिमाला
2: अखोइ मियोइ बसी अइन तौबना अइन फंगबा मान तौबना मान फंगबा हाइबसी सोइद्रब वाफमनी अदुबु कनागुंब मियोइ खरदी अइन तौबना मान फंगबा हाइन खनबगुम तौबसु थेंगनजे मसी मान तौथोरक पसिं येंगलगा हाइजेबनी हाइबदी मिहाद मिपुन खक्त तौरीबा मियोइ सिंग अदुगी महै फंगलोइ हाइनिंगाइ लैते
1: अचुम्बनी मान तौबना मान फंगबा अदुगा अइन तौबना अइन फंगबा हाइबसिदी मयेक न ताराब वफमनी फौ हुन बलौफमदा गेहु हौरकप होनदे करी हाइगे मला
2: अचुम्ब मगनी
1: रणबीर गी सिथि गी वारोल मखाता बियो
2: जुलाई गी तांग निपान उनखिसी अमुक्तंग हाइब थौरमदा थिएटर आर्टिस्ट अमदी राइटर कांगजम चौबगु उनबिखिबा ताजबदा यामन नुंगाइब थौरम ओइजखि नुमिसिमक्तदा थाबिरखिबा मतमगी वाफमदा इंडिया अमसु म्यांमार अनीगी मरी अईबा एमसी अरुण यामनमक नुंगाइजखी लोइनना मतमगी वाफमदा रत्थजत्रा अमदी मसीगा खुनाइगा लैनबा मरी हाइबसिदा मतमगी वाफम अमतंग थाबिराउ अदुगा तांग मापलदा चिंगलोन मापलगी वांग मदगी थौरम असिदा रॉयल कैरेबियन क्रूजरगी क्रू मेंबर हिजम सुरजलातागु उनबिखिबा ताजबदा अपेनबा पोकचखी
1: हौकीबा जुलाई निपानदा संदोकचखिबा थिएटर आर्टिस्ट राइटर अमसुंग लाइब्रेरियन कांगजम चौबगु उनदुना वारी वताई साखिबसी रणबीरना उनकिसी अमुक्तंग हाइन पनबिरकलिबासी खोंचचिगी वारीनि ओइगदबनी कोमला
2: अचुम्बनी
1: उनबिखिबा संलाकपम देवचंद्र शर्मा अदुगा थौरम पुथोकपना नोंथोमबम रोमा अदुगा जुलाई निपान नुमित असिमकी नुमिदांग तहनजखिबा मतमगी वाफम इंडिया अमसुंग म्यांमार अनीगी मरी अईबा एमसी अरुण अदुगा चिंगलोन मापनगी वांगमदगी थौरम असिदा हिजम सुरजलता देवी रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल शिप यूएसए गी क्रू मेंबर ओइरिबी हिजम सुरजलता देवी गा उनदुना वारी वताई साखिबा उनबिखिबा अमदी थौरम पुथोकपा नोंथोमबम रोमा थौरम सिंग असिबो दोमन नुंगाइना ताबिखि पाउदम बिरकपा थौरम संदोक चमल महै यानबनी लौजै थौरमगी मरी लैनब खुदिंगदसु अदोंगी वाफम असि पाउदमदुना सोइदना खंगनजगे अदुगा अदोमना तानिंगी पनबिरकपा मतमगी वाफमगी टॉपिक अदुमासु खंगजिनजरे मतमगी वाफमगी अइबसिंगदा पाउदमदुना सोइदना खंगनजगे
2: कसार बोंतरापुर सोइबम लैरक पुख्री अचौब मपालदगी सोइबम चंद्रकुमारना थाबिरकपसि थियेसियामु पाथोकजरके
1: इनाउ सोइबम चंद्रकुमारना नसिदि करी करी वाफम हाइबिरकप मला
2: कनागी या थंगनो मिंथोनबा सैरेंग अमा हानबोइने इबिरकली
1: तासी
2: कनान चलमबा पाउखोंनो कनागी या थंगनो ngairiबा इमागी फिजी फिना चाकलाबा फाउबदा नखोइना कना अमुक कीरिबगे नमांग द लांग ननिंग द सुतिन पोन द योगलीबा चेकलानी नखोइदि थौना फबनी हाइखिबदाइ लाउखिबदाइ ngamन कदाइ द चखरबगे अथौबसिंग इमांग द चाकलीबा मैरी सिंग मुथतलरो येकनबन संबल खाख्रबसु चोंगशिला इरमदमसे मिरान चाना मुनखिदौरे ইমাগি থমই তনিক তনিকলে
1: ইনাউ চন্দ্রকুমারগি কনাগি ইয়াথংনো মিংথোন বসাইদেং মালানা পাবিদুন তাজারে অনথোন ফজখরে থাগচরি
2: তামোমনি আমাদি ইটেমা মালাগি মফমদা ননাউ সৈবম চন্দ্রকুমার না আহান বমক্তদ ইকাই খুমনজবগলয়না ওয়াহং খরসু হংজখিবনি
1: আদুমবসু মনি মালানা ইকাই খুমনব উচ্চরি তাকপিউ কারি করম বওয়াফম ওইরবনো
2: ইমাংদ উন উন চাকলিব মৈরিবু কনবং আমহৌদব হাইবসি পাংদবনি হাইগদরা নিগম হৌদে হাইগদরা তামো খুনুং ইসৈ সৈসকপি মংকা মায়াং লম্বমনা নোংমা মৈরাং কংলাই রোলদ খামবন কাও ফাবগি মতাংদ সকপিরকি তাজরুবদ ইসৈ আদু হাইনিঙাই লৈতন নুঙাইজখি মতাংসু চান লোশিনখি হৌকিব জুলাইগি তাং তারা তরুক খুঙ্গি থরমদ সকিখিব নাওরেম গঙ্গা তোমবিনা মৈরাং কংলাই রোলদ পুরেমবন কাও ফাব ইসৈগি সৈথাদি সদৃক চংনিং খোমবিদ থৈবি থং পাওরোল হাংবিরো হাইজবদ ইয়াখিদবগি মতাং ওইন সন্দোপিরকি ননাউন চমমনরিবদি সৈসকপি আমনা খামবন কাও ফাই হাইবিরকি আদুগা সৈসকপি আমনা আমুক পুরেমবন কাও ফাই হাইবিরকি আচুম্বদু আমুকতং হাইবিরউ কানানা ফাখিব কাউনো হাইজবনি
1: চন্দ্রকুমারগি গাসিগি চিঠিগি ওয়াফম আসিদা থামজানিংবসি আকাশবাণী ইম্ফালগি পুকৈদ লাইরিব ইয়ামখ্রব খুনুং ইসৈগি রেকর্ডিংসিং আসি অন্থোনসু ইয়ামখ্রে হাইরিবসিং আসিগি মানুংদা লামদমসিগি সকনাইরেবি সৈসকপি মাংকা মায়াং লামবমনা সকপা ইসৈগি তাংকক আমসু থাগত ওয়ারোল থামবিরকলিব আদুনে আদুনা হাইরিব খুনুং ইসৈসিং আসিগি তাংকক সিং আসি সৈসকপ সৈসকপিসিং আদুনা পিবিরম্ব তাংকক নাকতনি চুমি খামবন কাও ফাবগি মতাং আসি আয়ামবন তানরে ইখং খংনরব ওয়ারিনি আদুমকপু পুরেমবন কাও ফাব হাইব মতাং আমা ইয়াউরিবসি তাসেংবমকতি সৈসকপি নাওরেম গঙ্গা তোমবিনা সকপিরম্বনি সালাং নিংথৌগি পামলৌদ কাউরেল সন ফাবগি মতাংবু তাংকক আনি থোকতুনা সকপিরম্বনি আদুগা সনরিক চানিং খোমবিগা থৈবিগা আনিগি ওয়ারি ওয়াতাই সানবগি মতাং ওইন তাবিহৌই হাইরিব আদুসু হাইরিব ইসৈগি তাংকক আসিগি মানুং চান্না আহৌব সরুকত ইয়াউবনি খুঙ্গি থরমদ নুমিত আদুদ মপুং ফানা ইসে এসে তাহানজব গমখিদবদগি চমমনব আসি থোকপ ওইগনি খালি কারি হাইগি মালা
2: আচুম্বনি
1: আদুমকপু কাউ কানান ফাখিবনো হাইবসি মনিমালান খুঙ্গুল লিদুনা আমুকতংসু ইয়েংজখিগে আদোমব থাগচরি
2: মথংগি চিঠি আসি থিয়াম রাম খুনফম মখা চিংফু নিংথৌ মসাইকোলদগি না ইবিরকপনি
1: কারি কারি ওয়াফম থামবিরকপ মালা তারসি
2: আহানবদ মনিমালাগি থরম পুবিরিব তামো ইচেমবু ইকাই খুমনজরি
1: থিয়াম রামবুসু মনিমালানা ইকাই খুমনব উচ্চরি তারাম ওকচরি
2: মতম কুইন লেপলুরব মতুংদ আকাশবাণী ইম্ফালবু নুংসিজদুনা চিঠি আমুক থাজখিবনি আকাশবাণী ইম্ফালগি থরমসিং নুঙাইনা তাজরি থরমসিং আদুদি জুলাইগি তাং তারাহুমদোই নুমিদাং ওয়াইরাম পুং তরুক মিনিট নিফু চটপ মতম

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी इम्फाल हौजिगा मुक ताबी रसी मणिपुरी मतमी सही सिंह मथंग मथंग होना खुदोल गया हान बदा तामिनसी हैसनाम रोमेश के खोंजल दा सगोल सेम लंचेन बा मीतैना सैरेंग बा मतमी सही

0: तसी नमक माने बनु शिविरम गदरने
1: अमुक्त दिहायो बा नचिलनु शिबे
0: कना कना होना भी क्या बनो
2: आई दे माहौशा लायन बिना कुंठरक तो ना इसे ही शक्ली बोए खालूर
0: कना होना भी क्या बनो
2: आई
0: कना थी बीरक बनो है बा
2: नुंशीबत ही जरक बने आई की मरुप ना है शुंकी है क्या तेरा फज़ा भी दे कुंगंग दले अदो बुंगशी दे इमित मंग उबा फंजरे
3: अश नंशी दे अंगक बने है आई ने गाड़ी मफ़म साबी यंगले काम नहीं था मामा बुगे संग दे मुझे पराउ संग मिले मशी दे इस तुम दे
0: तमो
3: माशे ही मरुप ने सूरज का हुई अंधे की एमसीएस ऑफिसर ने देखो मैं तमो हाला ब्रा
0: हलक दी
3: अदो दी नंग साने के तो शेमो
0: आई
3: मांग आई को
0: हुई
3: संग संग
2: भाई अशिरो नंग कोई है जुबो
3: करी ये बा
2: अशिरो बस
3: मार्क से आई की मरुकी मसल ने आई गोंदा तामो है अब दी यंजे तभी शम शम जब यंगाऊं ने कहीं नंग आऊंगी जुबो
2: भाई नंग कोई दिया
3: ओ नंग शी तो अभी जी चन्ने है रेतना कहीं नंग कातुन आऊंगी जुबो
2: शेंगी को भाई
3: मसी मसी कहीं दी मामा है जी काय ने तू ने मार्क से आई यूम दले हो भी इसल के सया इसल सया का अमत तू ने लूने तोर भी आई इसल ने है रेतना कहीं उन्हें कातुकन पंग आगे दबो
2: अजी दी भाई नंगी नसल से आई यो इजर के
3: सुरास
2: आई ये पुन्सी दा गर्लफ्रेंड तो थम की दे अदु बुंग शी दे माँ वो है वो मिकुप्ता आई आई माँ के लोगों का है ना लेबले मरुप
3: सुरास
4: ताबिरे शुमांग लीला लाएगी मचा अहम सुबह तंकर लीला साना भी खिबा नाहरोल खोंगथांग आर्टिस्ट एसोसिएशन की लीला रुई सिंह मथंग दमुक ताबिरसी खुंद्राक पम घनश्याम नखोंगबा बाशी

0: ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ
1: ꯗꯤꯗꯤ ꯅꯣꯀ꯭ꯔꯤ ꯂꯥꯛꯂꯦ
2: ꯑꯔꯦ ꯕꯥ ꯕꯥꯙꯥꯏ ꯍꯣ
3: ꯇꯣ ꯑꯕ ꯇꯣ ꯊꯦꯔ ꯁꯥꯔꯤ ꯁꯣꯄꯤꯡ
1: ꯍꯥ ꯗꯤ ꯅꯌꯥ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ
3: ꯑꯔꯦ ꯔꯨꯀꯣ ꯁꯍꯜꯖꯥꯗꯦ ਸੈꯂਰੀ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਖਰਚੇ
1: ਇੰਸਟੈਂਟ ਲੋਨ ਵੀ ਤੋ ਮਿਲਤਾ ਹੈ
3: ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਬਨਾਨਾ ਸਿੱਖੋ ਫਿਰ ਖਰਚ ਕਰੋ
1: ਪ੍ਰਦੀਪ
3: ਦੇਖੋ ਕਮਾਈ ਕਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਾਨਾ ਚਾਹੀਏ लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम
1: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा
3: अच्छा
4: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव
1: कई दिनों इसी दया मनाना
6: दासिंग कई का एचआईवी टेस्ट तो रुके तो हुआ
1: कई दिन अबानी दिया एचआईवी टेस्ट तो दोई दे
6: इबानी लो हों मगी अहन मसेन है ना करे अदा इबानी एचआईवी टेस्ट तो थोसे ना है ना रंबा
1: नबानी दी यांग कुई रे दाइने खंगना रपा अदुगा कई गिनो एचआईवी टेस्ट तो दोई दे नबानी गिसे ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯅ ꯗꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤꯅꯦ
6: ꯑꯗꯨꯏ ꯅꯠꯇꯦꯗ ꯑꯩꯁ ꯑꯥꯏ ꯚꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯁ ꯑꯥꯏ ꯚꯤ ꯂꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ
7: ꯃꯁꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯁ ꯑꯥꯏ ꯚꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯩꯁ ꯑꯥꯏ ꯚꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯔꯨꯇꯤꯟ ꯍꯦꯜꯊ ꯆꯦꯛꯀꯞꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯗꯕꯅꯤ
1: ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯩꯁ ꯑꯥꯏ ꯚꯤ ꯇꯦꯁꯇꯨ ꯇꯧꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯉꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ
6: ꯑꯩꯁ ꯑꯥꯏ ꯚꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯦꯜꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯇꯦꯁꯀꯤ ꯔꯤꯖꯜꯗꯣ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯅꯪꯅ ꯑꯦꯗꯁꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯕꯗꯤ ꯑꯩꯁ ꯑꯥꯏ ꯚꯤ ꯍꯦꯜꯞꯂꯥꯏꯟ ꯅꯝꯕꯔ 1097 ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯁꯜꯂꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯆꯠꯂꯒꯦꯀꯣ
8: ꯕ꯭ꯂꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯂꯤꯝꯐꯣꯕ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯂ꯭ꯌꯨꯀꯦꯃꯤꯌꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯁꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ꯃꯦꯖꯔꯦꯕꯜ ꯔꯤꯁꯤꯗꯨꯋꯦꯜ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯇꯦꯁꯠ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯁ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯇꯤꯛꯁꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯧꯖꯕ ꯍꯧꯖꯔꯦ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯁꯦꯜ 1000 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯝ ꯑꯥꯔ ꯗꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯇꯦꯁꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯜ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯂꯒꯅ ꯑꯦꯝ ꯑꯥꯔ ꯗꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯅꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ ꯃꯥꯏꯂꯣꯃꯥ ꯑꯦꯝ ꯑꯥꯔ ꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯗꯕ꯭ꯂꯤꯎ ꯕꯤ ꯁꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄ ꯂꯩꯅꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯃꯥꯏꯂꯣꯏꯗ ꯂ꯭ꯌꯨꯀꯦꯃꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯤꯁ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯕꯤ ꯁꯤ ꯑꯥꯔ ꯑꯦ ꯕꯤ ꯑꯦꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯇꯦꯁꯟ ꯇꯦꯁꯠ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯇꯦꯁꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯁ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯇꯤꯛꯁꯇ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯍꯦꯃꯥꯇꯣꯂꯣꯖꯤ ꯇꯦꯁꯠꯁꯤꯡꯁꯨ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯁ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯇꯤꯛꯁ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠ ꯏꯝꯐꯥꯜ
4: ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯁꯖꯥꯜ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤ ꯀꯦꯝꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯄꯨꯕꯤꯔꯝꯕ ꯎꯂꯦꯟꯕ ꯈꯥ ꯉꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯁꯣꯍꯣꯇꯦꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯦꯝꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯁꯖꯥꯜ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯀꯨꯟꯍꯨꯝꯗꯣꯏꯗ ꯃꯉꯥꯅꯤ ꯂꯩꯍꯨꯜ ꯊꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯂꯛꯂꯤ
9: EE maintenance to PHED na thadorokpa warol amagi matungena PHED gi ising sejinariba miyamna July 13 2026 paubagi manungda all bill arrears amasung meter gi dues concern office ta laklaga verified tauraga thidok pinabaning singjeri July 13 gi matungda di thidok haudaba consumer singi details mayamadu online portal da verified taubada kudong chanaba upload tauragani hainasu khangalagli
0: आकाशवाणी इम्फाल की थौरम सिंह अदुमन ताविरी हयेंग लेबाक पुक्प नुमित की अयुकी पुंग तरेट कंगला चैनल की खोंजल ना चोमदा फांगबिगनी अखनना पिथोरक पसिंग दे युम्फम ओइब थौरम उत्लम सी एखोय की थौना थौरम सिदा थोकचोम अंजेलिना देवी गा उनदना वरी शाबा उनबिगा दबा युमनाम बाबलु थौरम पुथोपा नोंथोम बम रोमा ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯟꯖꯔꯤ
10: ꯍꯦꯜꯂꯣ ꯈꯨꯡꯒꯪ
11: ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯊꯥꯡꯖ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯊꯝꯖꯕ ꯍꯦꯜꯂꯣ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯣꯟ ꯏꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 25 ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 6:40ꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ
10: ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯐꯥꯎꯅ ꯅꯧꯔꯤꯉꯩ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯕ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ
11: ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯗꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯋꯥꯏꯈꯣꯝ ꯖꯤꯇꯦꯟ ꯁꯤꯡ ꯐꯥꯔꯝ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯕꯤꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯊꯧꯕꯥꯜ
10: ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯁꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ 9362327078 ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯦꯜꯂꯣ ꯈꯨꯡꯒꯪ
0: ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯟꯖꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ Numidangi, Pung Tarit Makaitari, Mikokurgi Manunda, Manipurida Pau, Tavirasi.

ताबिरे कोई न चतुना इसई खनबा थौरम लानथुक पिखिबा सिंगदी लौरेमबम तुरिश अमदी तंफामनी लुक्राम थौरम पुथोकबा लाइश्रम समरजीत आकाशवाणी इंफाल हौजिगमुक ताबिरसी तोंगान तोंगानबा मणिपुरी फिल्म इसई सिंग मथंग मथंग ओइना

ताबिरे हेमंत कुमार लता मंगेशकर अनी अपुन खोंजल गीत मथंग लोखचरीब गीत की सैसक्पा केशोर कुमार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, कहते हैं कि मौसम बदलते रहते हैं, कभी धूप खिलती है, कभी बारिश होती है, कभी ठंडी हवाएं चलती हैं और कभी पेड़ों से पत्ते गिरने लगते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हमारी जिंदगी और हमारे रिश्ते भी कुछ ऐसे ही मौसमों से होकर गुजरते हैं। पहली मुलाकात किसी बसंत जैसी लगती है, प्यार का इजहार बारिश की पहली फुहार जैसा, और इंतजार सर्दियों की लंबी रातें, और कभी कभी बिछड़ना बिल्कुल पतझड़ की तरह लगता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्हीं मौसमों की और उन एहसासों की जो मोहब्बत को इतना खास बना देते हैं। शुरुआत करते हैं खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

दोस्तों मोहब्बत का अगर कोई मौसम होता तो शायद वो बारिश होती। बारिश की एक खास बात यह है कि ये लोगों को रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। खिड़की पर बरसता हुआ बारिश का पानी, गर्म चाय और एक हल्का सा संगीत और किसी अपने की याद। बारिश अक्सर पुरानी यादों को ताजा कर देती है। कई लोगों के लिए ये किसी खास मुलाकात की याद होती है तो कई लोगों के लिए ये किसी अधूरी कहानी। लेकिन बारिश सिर्फ यादों का मौसम नहीं है, ये एक नई शुरुआत का भी मौसम होता है। जैसे धरती बारिश के बाद महक उठती है, वैसे ही कई रिश्ते भी एक छोटी सी बातचीत से फिर से खिल उठते हैं, महक उठते हैं, ठीक इस खूबसूरत से गीत की तरह।

0: दोस्तों कहीं मत जाइएगा, बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हाजिर होता हूं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या

हमेशा अपने लोगों के थोड़ा और करीब ले आता है एक कप चाय और धूप में बैठकर लंबी बातें या फिर किसी अपने के साथ कुछ समय बिताना या कुछ वक्त बिताना मोहब्बत हमेशा बड़े-बड़े वादों में नहीं होती कई बार ऐसा होता है कि छोटी-छोटी बातों में छिपी होती है किसी का हाल पूछ लेना या ये पूछ लेना कि आपने खाना खाया या नहीं सर्दी में गर्म कपड़े पहनने की याद दिला देना या बिना वजह सिर्फ हालचाल पूछ लेना ही छोटी-छोटी जो बातें होती हैं ना वो रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बनाती हैं

दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में लंबे समय तक साथ रहते हैं, लेकिन कुछ सिर्फ हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। और पतझड़ का मौसम भी हमें कुछ यही सिखाता है कि कभी कभी पुराने पत्तों का गिरना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि नए पत्तों के लिए जगह बन सके। इसी तरह जिंदगी के कुछ रिश्तों का खत्म होना भी हमारे लिए एक सीख होती है, वो हमें आगे बढ़ना सिखाता है। मुझे पता है कि दर्द होता है, लेकिन समय के साथ इंसान फिर मुस्कुराना सीख जाता है। जैसे इस गीत को सुनने के बाद आप हल्का सा मुस्कुरा देंगे।

दोस्तों अगर जिंदगी में सिर्फ बसंत ही होता तो शायद हमें उसकी खूबसूरती का एहसास नहीं होता। बारिश हमें धैर्य सिखाती है, सर्दियां अपनापन सिखाती हैं और पतझड़ हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं और बसंत हमें सिर्फ और सिर्फ उम्मीद देते हैं। मोहब्बत भी तो कुछ ऐसी ही है, इसमें खुशी है, इंतजार है, दूरी है, मुलाकात है और सबसे ज्यादा उम्मीद है, और यही उम्मीद हर कहानी को आगे बढ़ाती है। चलिए कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत, और इसी गीत के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपनों और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll also be taking calls on your market-related queries. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these numbers if you're calling from out of Delhi or from your mobile phone. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन श्रोताओं हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे व्यापार अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 पर दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे श्रोताओं चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित है अर्थव्यवस्था पर विशेष पत्रकारिता करने वाले वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा शिशिर जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन
2: नमस्कार धन्यवाद
1: आइए श्रोताओं एक नजर डालें आर्थिक सुर्खियों पर
0: The benchmark domestic indices decline, Sensex drops nearly 450 points. Nifty settles at 24,239. India's core industries register growth of 5% in June this year and global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट Sensex 400 अंकों से अधिक बढ़ा Nifty 24,239 पर बंद हुआ भारत के प्रमुख उद्योगों में इस साल जून माह में 5% की वृद्धि दर्ज की गई और

0: Before we proceed, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking an investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं अब आइए रुक करते हैं कि और जानते हैं कि आज दिन के अंतराल में हमारे घरेलू शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज उतार चढ़ाव भरे सत्र के बाद गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 443 अंक यानी आधे प्रतिशत से अधिक लुढ़ककर 77,709 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 96 अंक यानी लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,239 पर आ गया। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में आधे प्रतिशत से अधिक और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में लगभग 0.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
0: The benchmark domestic equity indices ended on a negative note today after a choppy trading session. The Sensex shed 443 points or 0.6% to close at 77,709. The Nifty lost 96 points or 0.4% to settle at 24,239. However, in the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index rose 0.6% and the small-cap 100 index added nearly 0.2%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 19 कंपनियों के शेयर्स में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयर्स में सबसे पहला नाम ट्रेंट 3%, पावरग्रिड 1.8% और एनटीपीसी तथा भारती एयरटेल 1.5% से अधिक बढ़े। खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो एक्सिस बैंक

0: 5.5%, HDFC बैंक 5% से अधिक और मारुति के शेयर्स में 2% से अधिक की गिरावट आई.
1: And in the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 15 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, PSU banks jumped 3%, utilities rose 1.7%, and power added 1.5%. In contrast, private banks dropped 2.1%, top 10 bank index slipped 1.9%, and financial services lost 1%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,226 advanced, 2,039 companies declined and 249 remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल. अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 17 पैसे कमजोर होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 96 रुपए और 45 पैसे पर बंद हुआ. शशिर, हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर ने आज मार्केट में एक निराशा ला दी है और मार्केट अंततः ग्रीन जोन में बंद हुआ.
2: बाजार में देखिए, जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी बैंक है, उनके शेयरों में उछाल देखने को मिला. निजी बैंक जो थे उनके शेयरों में गिरावट देखने को मिली. ये बहुत ही कहते हैं कि रेयर सिचुएशन होते हैं जब ऐसा देखने को मिलता है कि एक ही क्षेत्र में दो अलग अलग तरीके के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं. सरकारी बैंकों के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं. अगर अब बीते कुछ दिनों में जो हम प्रमुख बैंकों की बात करें, उन सभी में हमने दोहरे अंकों में मुनाफा बढ़ते हुए देखा है. और सालाना आधार पर एक बैंक का जो मुनाफा था वो लगभग 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है. तो ऐसी सूरत में सरकारी बैंकों में एक उम्मीद बंधी है कि वहां पे नए सिरे से जो है वो खरीदारी की जा सकती है. निजी बैंकों के मुनाफे में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उस तरीके की नहीं हुई है जो हमने सरकारी बैंकों में देखा. तो शायद एक ये कारण हो सकता है कि हमने एक तरफ सरकारी बैंक में बढ़ोतरी देखी, लेकिन निजी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज जो थी उनमें हमने गिरावट देखी. और पूरा बाजार अगर आप देखेंगे, 400 पॉइंट के ऊपर जो गिरा, सेंसेक्स गिरा, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था
0: जी,
2: वो आप तेल, कच्चे तेल को लेकर के जो स्थिति है
0: जी,
2: उसका योगदान सबसे ज्यादा है. एक अनिश्चितता से बनी हुई है कि वहां पर क्या रहेगा
0: जी.
2: तो ये आज के बाजार में. और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण हमने देखा कि दवा कंपनियों के शेयरों में भी आज अच्छी तेजी आई. और ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि चूंकि वो एक तरीके से डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है, तो वहां पर हमने बढ़ोतरी देखी. तीसरा जो हमने चलन आज देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप, जो आम तौर पे कहते कि इसमें बहुत तेजी भी आती है और बहुत गिरावट भी आती है, आज के गिरावट के दौर में भी मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों आगे बढ़े.
1: राइट शशिर जी, वी आर टॉकिंग ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स. PSU banks and private banks, almost 5% of a difference. If you look at the PSU banks, jumped 3% and the private banks dropped 2.1%, almost a 5% contrast. What accounts for that?
2: Yeah, the most important reason is the result. I mean, if you go by the financial performance of Q1, that's April to June period, where we have seen all the public sector banks have recorded double digit or even more than double digit growth in the net profit. Even their net interest income has also gone up. Of course, the net interest margin is slightly on the lower side, but hopes are really good for the public sector bank, and that is why we are seeing this kind of increase in there. On the contrary, the private sector banks, we are not seeing the kind of growth in the net profit. And at the same time, one of the big private sector bank is also riddled in the controversy. That is also giving some kind of negative impression about the private sector banks. And that is why you are seeing a difference of 5% between the public sector bank and the private sector bank.
1: Another point, Shishirji, you know, given the situation in West Asia, you know, now on, and before we discuss, here is the first caller from Delhi, Premjeet. Premjeet ji.
3: Namaskar, Shishir sahab.
2: Namaskar.
3: आप सिन्हा साहब, आपने पिछली बार मुझे बताया था और मैंने पूरी वर्ल्ड घूमकर जब मैं आया तो मैंने ये एक्सक्यूट किया. सर, मेरा प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न इस बार कि सर, ये जो रोबोटिक सिस्टम है वर्ल्ड वाइड, या जिसको आप AI कहते हैं, क्या ये हम पर हावी होगा, हमारे इंडियन यूथ जो इंटेलिजेंट हैं, या हम उन पे हावी रहेंगे? सर, बड़ा छोटा सा प्रश्न है सर, पर विस्तार आप ही दे सकते हैं.
2: प्रेमजीत जी, प्रश्न छोटा नहीं है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है. और आज के दौर में कहें कि चाहे वो शेयर बाजार की बात करें या पूरे अर्थव्यवस्था की बात करें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसको लेकर के बहुत चर्चा चल रही है.

0: और ये मुद्दा, ये दो मुद्दे प्रमुख रूप से छाए हुए हैं। पहला कि क्या लोगों की नौकरियां जाएंगी, और दूसरा जो पारंपरिक सूचना तकनीक कंपनियां हैं आईटी सेक्टर्स की, जो कन्वेंशनल कंपनीज है, उनका क्या होगा। तो पहले प्रश्न का जवाब मेरे हिसाब से ये है, जो हमने 1991 में देखा था जब कंप्यूटर आया था, तो लोगों ने कहा कि नौकरियां जाएंगी क्योंकि अब कंप्यूटर आ गया है। लेकिन जिन लोगों ने कंप्यूटर के साथ चलना शुरू किया, उनके लिए कौशल्य बढ़ा और उनके लिए मौके ज्यादा बने। यही पक्ष जो है वो आप एआई के लिए भी कह सकते हैं कि एआई के साथ अगर हम चले तो हमारा कौशल्य बढ़ता है, हमारे लिए मौके बनते हैं। आपका यह है कि कौन हावी होगा, हम हावी होंगे या एआई हावी होगा। हम अगर हावी होने देंगे तो एआई हम पर हावी होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि तकनीक के को हम अपना मददगार बनाए, तकनीक को अपना मालिक ना बनाए। तो अगर मददगार अगर आप बनाते हैं, उनसे सहयोग लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और दूसरा जो प्रश्न जो मैंने खुद ही किया कि जो पारंपरिक आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं उनका क्या होगा, तो अभी मैं दो जो बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं आईटी सेक्टर के, जो इंफोसिस के चेयरमैन हैं नंदन निलेकनी या एनविद्या के जो सीईओ हैं, दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि पारंपरिक कंपनियों का महत्व बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि एआई को लेकर के डरने की जरूरत नहीं, बल्कि एआई को साथ लेने की जरूरत है। इससे हमारा आपका कौशल्य बढ़ेगा और हम बाजार में एक बेहतर कर्मयोगी कह सकते हैं, आप कर्मवीर कह सकते हैं, उसके तौर पे हम आएंगे।
1: बिल्कुल श्रोताओं, जिस तरीके से प्रेमजीत ने हमसे सवाल पूछा, आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। आपके सवालों के जवाब लेकर के हमारे साथ शिशिर सिन्हा मौजूद है। और ये देखिए, कोलकाता से इस बीच हमारे पास कॉल आ रही है डी आर आचार्य की।
2: हाँ
1: जी, अपना सवाल पूछिए महोदय।
2: हाँ सर, मैडम मेरा एनपीएस में कुछ पैसा लगा है, ठीक है, तो बीच में जो लड़ाई चल रहा था इसमें मेरे फंड के डाउन हो गया, इसमें पैसा लगाना ठीक होगा? और
0: देखिए, नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो थोड़े समय की कोई बचत योजना नहीं है, वो आपके लिए एक भविष्य की सुरक्षा, एक सामाजिक सुरक्षा है। जब आप सेवानिवृत्त होंगे वहां पर आपके लिए उससे जो भी पैसे आप जमा करेंगे उससे आपको एक पेंशन मिलेगा। आप यदि निजी क्षेत्र में काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत मददगार होगा। सरकारी क्षेत्र में भी 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी सरकारी क्षेत्र में आए हैं उनके लिए नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी। तो मुझे लगता है कि आपको ना ये रोज रोज के उतार चढ़ाव को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। एक जब आपकी मैच्योरिटी जो 60 साल की उम्र में होती है और अब 85 साल तक के लिए ये सुविधा दी गई है, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। चूंकि फंड जो है वो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा शेयरों में लगाया जाता है, आप विकल्प देते हैं, और अगर आपने विकल्प दिया है कि नहीं मेरा ज्यादा पैसा लगना चाहिए, तब भी आपको मौका मिलता है कि आप उसमें किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आप घबराएं नहीं, इसके भविष्य को लेकर के बहुत चिंता अभी नहीं करनी चाहिए।
1: और दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं। केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार जी, नमस्कार, किसी हमें पैसा लगाना चाहिए। और दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि जो अभी जो ललित लगी है तो वहाँ काफी क्षति हो गई है कई देशों में, रूस, यूक्रेन, ईरान और अदर्स अरब क्षेत्रों में। तो आने वाले समय में यहाँ काफी जो काफी दिल्ली के द्वारा से बढ़ेगी तो इस क्षेत्र में काफी स्कोप हो जाएगा, तो इसमें क्या बेनिफिट आगे हम
0: केशव जी, आपका जो पहला प्रश्न है कि एफडी का क्या भविष्य है, एफडी को लेकर के क्या करना चाहिए, मेरी हमेशा से राय रही है कि एफडी एक सुरक्षित निवेश है, चाहे वो आप सरकारी बैंक में करें या डाकघर में करें। सरकारी बैंक में ये होता है कि आपको अगर बैंक डूब जाता है तो भी 5 लाख रुपए तक की जो मूल रकम आपको मिलती है डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत। डाकघर में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, 1 रुपया भी आपका डूबने का खतरा नहीं होता है। तो फिक्स डिपॉजिट आपकी पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए, वो आपको एक सुरक्षा देता है। दूसरा प्रश्न था कि जगह जगह पर जो नुकसान हुए हैं, भवन नए सिरे से बनाने की जरूरत होगी। देखिए, ये बहुत ही दूर की सोच है, अभी की जो परिस्थिति है उसमें वहां पर उद्योगों की क्या स्थिति होगी, वहां किस तरीके से भवन निर्माण होगा, ये कहना भी बहुत ही मुश्किल है। उम्मीद करनी चाहिए कि ये जल्द से जल्द खत्म हो, युद्ध शांति की स्थिति बने, तो निश्चित तौर पर दुनिया भर की कंपनियों के लिए मौके जो है वो बन सकते हैं.
4: नेक्स्ट कॉलर इज राजीव फ्रॉम दिल्ली. राजीव,
1: लगता है हमारा संपर्क टूट गया है राजीव जी से. आगे बढ़ते हैं.
4: या मूविंग ऑन, द अल्ट्राटेक सीमेंट टुडे रिपोर्टेड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स For the first quarter of the current financial year, the company's consolidated revenue from operations rose by 15.8% year-on-year to 24,648 crore rupees. However, on a quarter-on-quarter basis, revenue dropped by 4.5%. The company's consolidated net profit grew by 16.8% to 2,599 crore rupees compared with the corresponding quarter of the previous financial year. However, on a sequential basis, the net profit declined by 12.8%.
1: और अब आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और जानते हैं कि एशियाई शेयर बाजार में क्या हलचल है. आज अधिकांश एशियाई शेयर बाजार मिले जुले रुख के साथ बंद हुए. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4.5%, ताइवान का ताइएक्स 0.5% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% लुढ़के. वहीं हांगकांग का हैंगसैंग लगभग 2.5% और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.8% बढ़ा. उधर छुट्टी के कारण जापान का बाजार बंद रहा. और रवि नारायण जी हमारे साथ श्रोताओं जुड़ रहे हैं भिलाई से. जी महोदय, अपना सवाल पूछिए कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
5: मार्केट मंत्रा, जल्दी जल्दी पूछ रहा हूँ. दो छोटे छोटे सवाल हैं.
1: जी,
5: पहला तो ये कि आज एक वो पंजाब नेशनल बैंक का मर्जर एंड एक्विजिशन के लिए कुछ फॉरेन किसी का उसको पार्टनर बनाने का प्लान के बारे में पढ़ा मैंने. तो इसमें पहली बात तो ये कि बाहर से क्यों जरूरत पड़ रही पार्टनर की, और दूसरा इसमें इनकी मंशा क्या है पंजाब नेशनल बैंक की, ये जानना चाह रहा था. और दूसरा ये कि ये अभी तो ये फिर से वार बढ़ने के बावजूद भी पेट्रोल मतलब ये पेट्रोलियम का जो प्राइस है वो कैसे गिर रहा है, ये जानना चाह रहा था. थैंक यू.
0: पहले अगर आपके दूसरे प्रश्न का हम जवाब दे दें, क्योंकि पहले प्रश्न का जवाब इसीलिए नहीं दे सकते क्योंकि वह खास कंपनी और बैंक से जुड़ा हुआ है जिसकी योजनाओं की हम चर्चा यहाँ पर नहीं करते हैं. आपका जो दूसरा प्रश्न है कि कच्चे तेल के भाव गिर रहे हैं, भाव गिरे नहीं, भाव तो बढ़े हैं, 80-85 के ऊपर चले गए हैं, तो वो तो हमारे लिए एक चिंता का विषय जरूर बन रहा है क्योंकि बीच में थोड़ी गिरावट आई थी तो एक राहत की उम्मीद बनी थी. अब फिर से बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है उससे रुपए पर दबाव बन रहा है और आपने उसका रुपए का चाल भी देखा है. तो अभी के समय में लड़ाई जैसे जैसे बढ़ेगी कच्चे तेल के भाव में तेजी आने की आशंका है, क्योंकि लड़ाई केवल एक देश तक सीमित नहीं है, वो पूरे क्षेत्र में है और वो क्षेत्र ऐसा है जहां से 20% जो है पूरी दुनिया की आपूर्ति का जो है वहां से गुजरता है. तो जाहिर है उसका असर तो आपके पेट्रोल डीजल या यूं कहें पहले हम कहें कि कच्चे तेल के भाव पर पड़ेगा.
1: आगे बढ़ते हैं. प्रमुख उद्योग सूचकांक सालाना आधार पर जून में 5% बढ़ा. ये बढ़ोतरी पिछले 5 महीनों में सबसे अधिक है. इससे पहले मई में 3.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. जून के आंकड़ों के साथ ही संशोधित श्रृंखला भी पहली बार जारी की गई है जिसमें आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है. नई श्रृंखला के अंतर्गत प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की संख्या 8 से बढ़ाकर 9 हो गई है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी शुरुआती आंकड़ों के अनुसार आयरन ओर के उत्पादन में लगभग 44% की वृद्धि हुई जबकि बिजली उत्पादन और सीमेंट उत्पादन में 9.8% की बढ़ोतरी हुई. वार्षिक आधार पर स्टील उत्पादन में 4.6% और कोयला उत्पादन में 1.4% की वृद्धि दर्ज की गई. हालांकि वार्षिक आधार पर प्राकृतिक गैस उत्पादन में 7.4%, रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में 4.5% से अधिक, कच्चे तेल के उत्पादन में 4% से अधिक और उर्वरक उत्पादन में 3.3% की गिरावट आई. शिशिर जी, ये एक अच्छी बात है कि ये बढ़ोतरी हुई है, इसे आप कैसे देखते हैं? एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी.
0: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जितने भी हमारे आर्थिक सूचकांक है, अगर हम बात करें GDP, हम बात करें महंगाई दर की और अब जो है ये प्रमुख उद्योगों की बात करें, इसके आधार वर्ष का बढ़ना इसलिए आधार वर्ष का नए सिरे से तय होना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो वास्तविकता के करीब होते हैं. अभी जैसा कि आपने कहा कि 2011-12 पहले आधार वर्ष था, अब 2022-23 है. तो अगर आप GDP का भी देखेंगे तो 2022-23 हो गया है. WPI का भी देखेंगे 2022-23 हो गया है. CPI की हम बात करें वो 2024 हो गया है. तो आधार वर्ष का बढ़ना एक दूसरा दायरा बढ़ गया है, पहले 8 होते थे अब 9 हुआ है। और इस्पात का आना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस्पात जो है वो आर्थिक गतिविधियों में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक छोटी सी बात इसमें और जोड़ना चाहेंगे कि जो प्रमुख उद्योग क्षेत्र है, ये जो आंकड़े आते हैं ये हमारे पूरे औद्योगिक क्षेत्र का एक ट्रेलर है, यानी कि जब 28 तारीख को औद्योगिक क्षेत्र के आंकड़े आएंगे तो एक अनुमान आज हम लगा सकते हैं कि वहां पर स्थिति क्या होगी।
4: Right, and our next caller is Kanta from Gurugram. Kanta.
6: Mujhe namaste sir.
0: Namaste.
6: Main ye puchna chahti hu ki senior citizen scheme mein main bank mein paise lagaye hue hain. Haan sir.
0: Ji ji.
6: To isko jaise PPF ka paisa to sarkar deti hai, to isko bank dega ya sarkar degi? Aur zyada ho jata bank doob jata to fir wo mar jayega paisa zyada karwa diya to.
0: कांता जी, दो बातें हैं। जो आप बैंक में पैसा रखती हैं वो जाहिर सी बात है वो बैंक ही देता है, उस पर ब्याज भी बैंक ही आपको अदा करता है। यदि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अगर आप डाकघर में खोलती हैं वो पैसा वो सरकार के जरिए आता है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि अगर बैंक डूब जाए तो बैंक डूबने की सूरत में प्रति शाखा जो है वो आपको 5 लाख रुपए तक का जो है वो आप प्रति बैंक जो है वो 5 लाख रुपए तक आपको मिलता है एक समय में, और बाकी पैसा जो है वो बाद में उसके भुगतान की उम्मीद बनती है। तो बैंकों में जो ब्याज दर है उससे कहीं ज्यादा ब्याज दर डाकघर में है, और वहां पर फायदा ये भी है कि वो ब्याज और मूल दोनों ही भुगतान सरकार करती है।
1: शिशिर दिल्ली से हमारे साथ दिनेश जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
7: नमस्कार जी।
0: नमस्कार।
7: हाँ सर जी, मेरे पास ये अपने फोलियो नंबर है खाली, हमारे पास शेयर नहीं है, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं मतलब हमारे को इश्यू हो जाएंगे जी उसके फिजिकल शेयर?
0: दिनेश जी, अब तो फिजिकल शेयर की तो बात होती नहीं है। आपके पास जिस किसी कंपनी के शेयर है वहाँ के रजिस्ट्रार से आप संपर्क करें, यहाँ उनके जो रजिस्ट्रार होते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपका जो पैन नंबर होगा या जो डीमैट अकाउंट नंबर होगा इसमें से कोई भी एक जानकारी देकर के आप ये पता कर सकते हैं कि वो शेयर कहाँ है। फोलियो नंबर आम तौर पर म्यूचुअल फंड के लिए ज़्यादा यूज होता है, तो अगर म्यूचुअल फंड के उससे है तो आप जो संबंधित असेट मैनेजमेंट कंपनी है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं।
4: शिशिर जी, वन question we which we were discussing earlier on, if you look at the market situation, domestic market situation, and also the results which have been pouring in over the past couple of days now, so given the situation the world over, especially in the context of the West Asian crisis, how do you see these numbers stacking up? Especially these numbers are so very encouraging.
0: See, I think we need to understand that the impact was starting in the month of February, from 28th of the February. So the first full month was March, and then we have the first full quarter of April to June. Now the big question we are asked is there that why there the number is so encouraging? Why the numbers, I mean, not indicating the kind of stress which we were apprehending? One of the reason is because of the market situation. Market means the consumer market. If you go by the consumption market, the consumption is good in the domestic sector, that is also helping you. You also need to understand what is happening on the export front. Just on 15th of this month, we were going through the export data, and there we found that both export and import both have gone up. Export has also given a very encouraging sign. That means that companies are able to sell their produce outside. Now the concern here is that the cost of production has slightly gone up, and that is why the profitability is of course on a higher side, but it could have been much higher had the cost of production been the lower because of the fuel prices. And also you need to remember that during that period of April to June, we have seen some curb on supply of fuel to various industries, various sectors. Now that supply has been has been normalized, so all these things are contributing in that. So the number one is up export number, and then the consumption number.
1: Right. और इस बीच बिहार से हमारे साथ टिंकू जुड़ रहे हैं। टिंकू जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
8: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते
8: मैम, मैं पोस्ट ऑफिस गए थे, बेगूसराय कोई गांव है, ठीक है, और मैं उससे पूछे थे संतोष पॉलिसी करना है इंश्योरेंस, तो वो पूछा क्या पोस्ट ऑफिस वाला अधिकारी पूछा
0: कौन सी पॉलिसी आपने टिंकू जी कौन सी पॉलिसी आपने कही
8: संतोष
0: पॉलिसी
8: हाँ पोस्ट ऑफिस का है संतोष पॉलिसी इंश्योरेंस है लाइफ इंश्योरेंस हो या
0: अच्छा अच्छा ठीक है
8: तो मैं वो पूछा आपका उम्र क्या है तो मैं बोले 41 तो बोला कि 19 साल का पॉलिसी होगा आपको 60 साल में आपको पूरे रुपया मिल जाएगा तो सर वो 2 लाख इंश्योरेंस बता था प्रति मगर 1300 रुपया मंथली बोला था जमा करने के लिए
0: okay.
8: तो 2 लाख से तो ज्यादा पड़ रहा है क्या जीएसटी वीएसटी वो तो कट रहा है क्या उसमें पोस्ट ऑफिस में तो कोई एजेंट वगैरह तो है नहीं उसमें एजेंट चार्ज तो लगता नहीं है यही मैं जानकारी चाहते हैं और एक और सवाल है
0: जी.
8: जैसे पीपीएस अकाउंट में पोस्ट ऑफिस में कराते हैं
0: जी.
8: उसको ब्याज दर में क्या फर्क है और बैंक में क्या फर्क है दोनों में जानकारी चाहिए सर.
0: पहले अगर मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब दूं कि पीपीएफ आप कहीं भी खोलें चाहे आप बैंक में खोलें या डाकघर में खोलें ब्याज की दर एक होती है क्योंकि पीपीएफ को बैंक नहीं चलाता बैंक वहां पर एक तरीके से आपके लिए एक सुविधा मुहैया कराता है कि आप हमारे यहां आकर के अकाउंट खोल लीजिए डाकघर में भी आप खोल सकते हैं तो उसको लेकर के आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. दूसरी बात है कि जो आपने जिस पॉलिसी की बात की जीवन बीमा पॉलिसी की बात की पहली बात की देखिए व्यक्तिगत तौर पर जब आप जीवन बीमा पॉलिसी की बात करते हैं उस पर कोई जीएसटी नहीं होता है तो उसमें जीएसटी को लेकर के अगर कोई कहता है तो वो गलत कहता है व्यक्तिगत तौर पे नहीं है. हाँ यदि एक सामूहिक आप किसी कंपनी की तरफ से ले रहे हैं तो वहां पर आपको देना पड़ता है. रहा सवाल कि कितने समय के लिए लेना है वो हर पॉलिसी की अपनी शर्तें होती हैं और डाकघर की जो जीवन बीमा पॉलिसीज हैं वो बहुत अच्छी पॉलिसी है उनमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है और उसमें सुरक्षा भी काफी ज्यादा होती है.
4: मूविंग ऑन टू क्रूड नाउ द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रिवर्स्ड देयर अर्ली गेन्स टुडे आफ्टर Iran's foreign ministry said negotiations with the U.S. could be pursued based on national interest. Brent crude was trading 0.8% down at $87.35 per barrel in the intraday trade. The West Texas Intermediate crude was trading 1.5% down at $81.23 per barrel when reports last came in. Quick comment, Shishirji. On crude.
0: The problem we are facing at this moment is there is still a lot of uncertainty. Mm-hmm. Sometimes you are finding that the Iran is saying, okay, we are ready to negotiate, but only on the national interest. Mm-hmm. On the other side, when you hear US President, he has its own way of explaining the thing. So at this moment, today you will see, I mean, as you just mentioned that it was down by 8% and it was around 87 barrel.
4: 0.8%.
0: 0.8, yes. I'm sorry. 0.8% and it was $87 a barrel. Mm. For us, from the Indian perspective, it is coming down below 80. Then only there will be some relief. But anything above 80 is not good for rupee as well as for prices of petrol and diesel.
4: Right. And in the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 0.5% up at 1,42,390 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.2% up at 2,19,670 rupees per kilogram a short while ago.
1: Multi-commodity exchange mein agast anubandh wala sona aadhe pratishat se adhik badhkar 1,41,754 rupaye prati 10 gram par karobar kar raha tha aur september anubandh wali chandi 1.3% ki badhat ke saath 2,19,233 rupaye par chal rahi thi. Shishir ji, sanshipt tippani chahungi aapse sone aur chandi ke bhav par.
0: Dekhiye, ek dilchasp baat ye hai ki ladai ke beech mein sone chandi ke bhav mein giravat aa rahi hai. Ye kai baar log को हैरान भी कर रहा है लेकिन आप इसको सीधा जोड़िए डॉलर से जब जब डॉलर मजबूत होगा सोना उतना ही ज्यादा कमजोर होगा.
4: राइट
1: शशि जी, कार्यक्रम में आने और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारे तमाम कॉलर भी जुड़े हैं हमारे साथ में, उनके भी सवालों के आपने जवाब दिए उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद.
0: जी धन्यवाद.
4: थैंक यू सो वेरी मच शशि जी. एंड बिफोर वी क्लोज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन. द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 450 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 24,239. इंडियाज कोर इंडस्ट्रीज रजिस्टर ग्रोथ ऑफ 5% इन जून दिस ईयर एंड द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस decline. And that's all we have in this edition of Market Mantra. I am Nishit Kumar along with my co-anchor Prachi Priya saying goodbye.
9: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
10: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से कार्यक्रम की इस बेहतरीन से गीत के साथ

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र से पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित की गई और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। दोनों नेताओं ने व्यापार, समुद्री साझेदारी, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को बढ़ाने पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी के बारे में भी बात की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न मुद्दों पर अपना पक्ष रखेगा। सिक्किम के नामची जिले में NHPC द्वारा निर्माणाधीन एक सुरंग में कम से कम 25 लोग फंस गए हैं। उन्हें बचाने में के प्रयास जारी हैं। नामची SSP ने बताया कि NDRF और स्थानीय एजेंसियां उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि गैस रिसाव के कारण फंसे हुए लोगों को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। सुरंग ढहने के बाद गैस रिसाव की सूचना मिली थी। यह घटना मेमरंग पुलिस चौकी के अंतर्गत हुई। और खेलों में पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही मौसम बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Monsoon session of Parliament began on a stormy note yesterday. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues, including the neat paper leak case.

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ

कर्ज फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में. आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने. मोहब्बत से दूर रहने की हिदायतें तो सदियों से दी जाती रही हैं, मगर इश्क कब किसी नसीहत का मोहताज रहा है. दिल जब किसी की आहट को अपनी धड़कन बना ले, तब दुनिया की हर सलाह, हर दलील और हर रोक बस एक आवाज बनकर रह जाती है. आखिर इश्क के मामले में कौन किसी की सुनता है, या तो दिल ही फैसला करता है और वही अपना अंजाम भी लिखता है.

डिस्को डांसर फिल्म का गाना आपने सुना बप्पी लाहिड़ी की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत भी दिया बप्पी लाहिड़ी ने। वो लम्हे, वो बातें, वो एहसास जो कभी मेरी दुनिया थे। कुछ रिश्ते भले ही वक्त की धूल में ओझल हो जाएं, मगर उनकी महक उम्र भर दिल में बसी रहती है। तेरे प्यार की वही खुशबू आज भी मेरी यादों में उतर आई है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:35 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत

बातों बातों में फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज में योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने कभी कभी मोहब्बत अल्फाज की मोहताज नहीं होती दो निगाहें मिलती हैं दो दिल एक दूसरे की धड़कनों को सुन लेते हैं और बिना किसी इजहार के एक रिश्ता जन्म ले लेता है यही तो प्रेम का सबसे खूबसूरत रूप है जहां खामोशियां भी गुफ्तगू करती हैं और बिना कहे सुने ही दिलों की बात हो जाती है

कभी कभी हिंदी फिल्मी गीत प्रेम की उस पहली हलचल को इतने खूबसूरत अंदाज में बयान कर जाते हैं कि शब्द सीधे दिल में उतर आते हैं। शायद यही वजह है कि ये गीत सुनते हुए महसूस होता है कि सच्चा प्यार जब दिल को छूता है तो उसकी खुशबू सिर्फ यादों में नहीं पूरे वजूद में उतर जाती है। दर्द फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे नक्श ने लिखा और संगीत दिया खयाम ने।

वक्त हुआ है 12:52 और ठीक 43 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी-बारी से समाचार समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए

बेताब फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर अरुआल्डो मार्टिनेज आचावास केस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, व्यवसाय, विकास, समुद्री, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित व्यापक चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों पर भागीदारी के बारे में भी बात की। भारत ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस दुखद घटना में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 की हालत गंभीर है। मंत्रालय ने बताया कि घटना के समय जहाज पर 5 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 17 सदस्य थे। मंत्रालय ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष नागरिक चालक दल के सदस्यों पर हमला तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता में बाधा डालना निंदनीय है और इससे बचा जाना चाहिए। सरकार ने मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले में NHPC द्वारा निर्माणाधीन एक सुरंग में कम से कम 25 लोग फंस गए हैं। उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। नामची SSP ने बताया कि NDRF और स्थानीय एजेंसियां उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। हालांकि गैस रिसाव के कारण फंसे हुए लोगों को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। सुरंग ढहने के बाद गैस रिसाव की सूचना मिली थी। यह घटना मिमरंग पुलिस चौकी के अंतर्गत हुई। और खेलों में PV सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणय टीम का हिस्सा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ

काला बाजार फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने इतने प्यारे गीतों का साथ हो तो नींद भला कैसे आए हर नगमा किसी याद को छेड़ देता है हर धुन किसी एहसास को जगा देती है ऐसी रातों में आंखें भले ही जागती रहे मगर दिल सुरों की चादर ओढ़कर एक खूबसूरत सफर पर निकल पड़ता

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 से आपने गाना सुना हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में. पीएल संतोषी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया कल्याण जी वीर जी शाह ने. गीत सुनते सुनते जब नींद आंखों में उतरने लगे तो लगता है जैसे सुर लोरियां बन गए हों. हर धुन धीरे धीरे मन को सहलाती है और हर शब्द सपनों का रास्ता दिखाने लगता है.

आंखों से कोई नींद लिए जाता है क्या खूबसूरत एहसास है इस पंक्ति में कभी किसी की याद कभी किसी का ख्याल तो कभी कोई प्यारा सा नगमा कुछ तो है जो रात भर आंखों को जगाए रखता है नींद आती भी है तो ठहरती नहीं जैसे किसी ने चुपके से उसे अपनी हथेलियों में समेट लिया हो पूजा के फूल फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने

पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एस डी बर्मन ने। हर रात चांद तो अपने वक्त पर लौट आता है, मगर जिसका इंतजार हो उसके कदमों की आहट नहीं आती। फिर भी दिल उम्मीद का दिया बुझने नहीं देता, शायद अगली चांदनी रात के साथ वो भी लौट आए जिसकी कभी हर उजाले को जिसने कभी हर उजाले को अधूरा बना दिया था।

पतिता फिल्म का गाना आपने सुना हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखिए, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:35 और ठीक 1 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है

आपने सुना शबाब फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने इश्क की दुनिया में आशिक अपने महबूब से जुड़ी हर राह हर गली हर याद को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज मान लेता है यही वजह है कि ऐसे गीत सुनते हुए हमें एहसास होता है कि मोहब्बत का असली रंग पाने में नहीं बल्कि उसे पूरे दिल से महसूस करने में है

कभी कभी रिश्तों में कोई गुनहगार नहीं होता बस हालात ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां दोनों तरफ दर्द होता है दोनों तरफ इंतजार होता है और दोनों तरफ अनकही बातें रह जाती हैं ऐसे गीत हमें सिखाते हैं कि हर बिछड़ने वाली कहानी में एक ही दिल नहीं रोता कई बार दोनों ही अपने अपने हिस्से का गम चुपचाप जी रहे होते हैं आपने सुना कुंदन फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया गुलाम मोहम्मद ने

वक्त हुआ है 1:47 और ठीक 24 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

बेगाना फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया सपन जगमोहन ने। यादों की भी अपनी एक अजीब फितरत होती है। हम समझते हैं कि वक्त ने हमें उन्हें कहीं पीछे छोड़ दिया है, लेकिन फिर किसी शाम की खामोशी, किसी हवा के झोंके या किसी पुराने नगमे की धुन उन्हें फिर से हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है।

जब से तुम्हें देखा है इस फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया दत्ताराम ने।

वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 17 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी-बारी से समाचार समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्किस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, व्यवसाय, विकास, समुद्री, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर और कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत में के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रा को अधिक सुविधाजनक और यात्री अनुकूल बनाने के लिए डिजिटल लोकल पास और मार्ग मित्र सहायता केंद्र की शुरुआत के साथ राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप पर डिजिटल सेवाओं को आगे बढ़ाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि नए डिजिटल लोकल पास के पात्र यात्री टोल प्लाजा जाएं बिना राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मासिक टोल पास खरीद सकते हैं। प्राधिकरण ने मार्ग मित्र सहायता केंद्र भी शुरू किया है। यह राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप में एकीकृत डिजिटल सहायता मंच है। सिक्किम के नामची जिले में NHPC द्वारा निर्माणाधीन सुरंग में कम से कम 25 लोग फंस गए हैं, उन्हें बचाने के प्रयास जारी हैं। और खेलों में पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सहाग और उन्नति हुडा भी शामिल है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष सेट्टी और HS प्रणय टीम का हिस्सा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by R.S. Raghu. Monsoon session of Parliament began on a stormy note yesterday. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues including the NEET paper leak case. The Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to six former members who passed away recently. The House also paid tributes to Father Emir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and Samajwadi Party over the NEET issue. Union Minister Jagat Prakash Nadda met the representatives of protesters in New Delhi yesterday. Social media post, Mr. Nadda said that a proposal came from the protesters to hold talks with the government. The minister said the meeting took place in a cordial atmosphere and initial verbal discussion was held in detail with their delegation and they submitted a written petition to the government at around 4 p.m. More than 118 police personnel sustained injuries yesterday when a protest escalated into violence in New Delhi area. The injured include senior officers of the rank of Special Commissioner of Police, Joint Commissioner of Police, Additional Commissioner and Deputy Commissioner of Police. In a statement, Delhi Police said, during the protest, the protesters displayed unruly, aggressive and violent behavior and despite repeated warnings and lawful directions, they refused to disperse and violated the prohibitory orders in force. Delhi Police said protesters attacked police personnel, vandalized police and other government vehicles and resorted to violence, posing a serious threat to public order. Police said during the scuffle, around 60 protesters were also reported to get injured. It said about 70 protesters have been detained. Appropriate legal action is being initiated and an FIR is being registered under the relevant provisions of Bharatiya Nyaya Sanhita and other applicable laws. President Draupadi Murmu has called for deeper economic engagement between India and Moldova, saying the two countries have immense potential to expand cooperation in several high-growth sectors. The president was addressing the India-Moldova Business Forum in Chisinau yesterday. Referring to the vision of Viksit Bharat 2047, President Murmu said, India seeks partnerships based on trust and shared prosperity while Moldova's strategic location and skilled workforce offer promising opportunities for Indian businesses. Earlier, President Draupadi Murmu and her Moldovan counterpart Maya Sandu held delegation-level talks. The Ministry of Law and Justice has released the draft Advocates Amendment Bill 2026 for stakeholder and public consultation. The draft has been prepared in consultation with the Bar Council of India and has been placed on the Bar Council's official website to invite comments and suggestions. The ministry said that all stakeholders, including members of the public, can submit their comments and suggestions on the draft bill to the Bar Council of India and the Department of Legal Affairs by 31st of this month till 3 p.m. In Himachal Pradesh, all educational institutions in Kangra, Mandi and Sirmaur districts will be closed today in view of a red alert issued by the weather department, officials said. The Met Office has issued a red warning for heavy rain in Chamba, Kangra, Kullu, Mandi and Sirmaur districts tomorrow. According to the State Emergency Operations Center, 36 roads, including 11 in Mandi and 10 in Chamba district, are closed. Authorities have asked people to follow official advisories and contact the State Emergency Helpline 1070 or the District Emergency Helpline 1077 in case of any emergency. India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for very heavy rainfall over Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir today. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jharkhand and Odisha, Uttar Pradesh during the next 24 hours. Similar weather conditions will prevail over Madhya Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, West Bengal and parts of North India during the next 2 days. That is the end of this news bulletin.

वक्त हुआ है 2:11 और ठीक 2 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ

वो सात दिन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और शबीर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कितनी सहज और गहरी बात है ये प्यार किया नहीं जाता हो जाता है प्रेम कोई फैसला नहीं एक एहसास है ये ना तो किसी योजना का हिस्सा हो सकता है ना किसी तर्क का कब कोई मुस्कान दिल में उतर जाए कब किसकी आवाज अपनी लगने लगे और कब किसी की मौजूदगी जिंदगी का सुकून बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता

जुर्म फिल्म का गाना आपने सुना कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में। देव कोहली ने इसे लिखा और संगीत दिया आनंद राज

जिंदगी हर दिन एक सी नहीं होती, कभी खुशियों की धूप होती है तो कभी परेशानियों की छांव। ऐसे में सबसे बड़ी ताकत किसी का साथ होता है, एक ऐसा साथ जो हालात बदलने पर भी ना बदले।

लहू के दो रंग फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में फारूक कैसर ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:35 और ठीक 32 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

आशा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। जिंदगी हमें यही सिखाती है कि कुछ चीजें कितनी भी संभाल कर क्यों ना रखी जाएं, वक्त, हालात या लापरवाही की एक चोट उन्हें बिखेर सकती है, लेकिन संगीत की खासियत देखिए, वो टूटे हुए दिल की आवाज भी बन जाता है और बिखरे हुए एहसासों को फिर से समेटने का हौसला भी देता है।

कुछ एहसास उम्र के साथ फीके नहीं पड़ते। तेरे पहले प्यार की खुशबू आज भी मेरी सांसों को महका रही है और हर धड़कन जैसे उसी अनकहे मासूम से एहसास का गीत गुनगुना रही है। फिल्म बदलते रिश्ते का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

एक जान है हम। इस फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया अनु मलिक ने।

वक्त हुआ है 2:54 और ठीक 50 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार समाचारों के बाद 3:10 पर हमरा ही सुनेंगे कार्यक्रम आप पंकज गोस्वामी के साथ तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही रद्द स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती है। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के हिंसा में बदलने से 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी कल घायल हो गए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आक्रामक और हिंसक बर्ताव किया। वे चेतावनी तथा कानूनी निर्देशों के बावजूद आगे बढ़े और रोक के आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस

0: कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले की एसआई जांच के बारे में जानकारी देगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में अपने पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा अवास्केस से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत की भागीदारी को गहरा करने पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, व्यवसाय, विकास, समुद्री, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित व्यापक चर्चा की। विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। समीक्षा के दौरान WTO के 40 से अधिक सदस्य देशों के अपने अपने वक्तव्य देने की संभावना है। ओमान के मस्कट में कल FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप 2026 में भारतीय जूनियर पुरुष और महिला टीमों ने अपने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। भारतीय टीमें पुरुष और महिला वर्ग के एलीट पूल में हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। Monsoon session of Parliament began on a stormy note yesterday. Both houses of Parliament witnessed multiple adjournments following uproar by opposition parties over various issues including the neat paper leak case. Lok Sabha and the Rajya Sabha were later adjourned for the day. The Lok Sabha began with obituary references to 6 former members who passed away recently. The House also paid tributes to the father Emir of Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. However, question hour could not be taken up due to protests by opposition members from the Congress and the Samajwadi Party over the NEET issue. Union Minister Jagat Prakash Nadda met the representatives of protesters in New Delhi. In a social media post, Mr. Nadda said that a proposal came from the protesters to hold talks with the government. The minister said the meeting took place in a cordial atmosphere and initial verbal discussion was held in detail with their delegation and they submitted a written petition to the government at around 4 p.m. More than 118 police personnel sustained injuries yesterday when a protest escalated into violence in New Delhi area. The injured include senior officers of the rank of Special Commissioner of Police, Joint Commissioner of Police, Additional Commissioner and Deputy Commissioner of Police. In a statement, Delhi Police said, during the protest, the protesters displayed unruly, aggressive and violent behaviour and despite repeated warnings and lawful directions, they refused to disperse and violated the prohibitory orders in force. Delhi Police said the protesters attacked police personnel, vandalised police and other government vehicles. The police said during the scuffle, around 60 protesters were reported to get injured. It said around 70 protesters have been detained and appropriate legal action is being initiated and an FIR is being registered under the relevant provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita and other applicable laws. President Draupadi Murmu has called for deeper economic engagement between India and Moldova, saying the two countries have immense potential to expand cooperation in several high-growth air sectors. The president was addressing the India-Moldova Business Forum in Chisinau yesterday. Referring to the vision

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं पंकज हूँ आपके साथ और रात के 3:10 हो चुके हैं और अब शुरू होता है कार्यक्रम हमराही और अब मैं आपसे मिलता हूँ इन दो गानों के बाद और अजनबी मूवी के इस गाने से शुरुआत करते हैं और आप इन गानों का मजा लीजिए। दो गानों के बाद आपसे मुलाकात होती है।

के साथ पुरानी चीजों का स्वाद जो है वो कम हो जाता है, लेकिन इन पुराने गानों का टेस्ट तो हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आराधना मूवी से लता जी और किशोरदा की वॉइस में ये गाना था, एसटी बर्मन का म्यूजिक और आनंद बख्शी के बोल थे। आधी रात की इस खामोशी में जहां आधी दिल्ली सो रही है, वहीं कई लोग जो है वो अलग अलग कारणों से जागकर कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। कोई अपनी जॉब कर रहा है और कोई जो है कुछ और काम कर रहा होगा, जैसे कि मैं यहाँ स्टूडियो में बैठ के आपके साथ आपको जगाए रखने के लिए आपके साथ बातें कर रहा हूँ। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं पंकज हूँ आपके साथ, और पुराने ड्यूट्स गानों का कलेक्शन लेकर हमरा ही शो में मैं आपके साथ रहूँगा इस पूरे घंटे। और देखिए, एक चीज़ और भी मुझे बतानी है कि प्यार जो है ना वो किसी से भी हो वो खुशी ही देता है, तो इन गानों से मोहब्बत करने वालों के लिए सुकून की रात है। मैं इन दो गानों के बाद आपसे दोबारा मिलता हूँ। अभी के लिए दहलीज मूवी से महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज़ में ये गाना।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

एक मैं और एक तू मूवी से ये वाला गाना था. और देखिए, अगर बेकार की बातों में हम उलझे रहेंगे ना तो जिएंगे कब. जिंदगी बीत रही है और अपने पसंदीदा इंसान के साथ जो है वो खुशनुमा लम्हे बनाइए और उनका मजा लीजिए, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. आई नो ये एक फिल्म का मैंने डायलॉग मार दिया, लेकिन बातों से ये जिंदगी तो देखिए हर दिन बीत ही रही है. ये जो टाइम अभी जो हम जी रहे हैं, ये टाइम जो है सुबह के 6 बजे तक नहीं होगा, सुबह कुछ और चीज़ होंगी. तो और उसके अलावा एक और चीज़ मुझे ये बतानी है कि जब आपके साथ आपका पसंदीदा इंसान हुआ तो सच मानिए जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है. मैं हूँ पंकज आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर. प्यार बांटिए, क्योंकि इससे ज़्यादा सुंदर कुछ नहीं है.

ये आधा साल बीत चुका है और समा तो मानो एकदम भाग रहा हो। वैसे हमराही शो का टाइम भी जो है वो पूरा होने वाला है और अब अगले घंटे नेक्स्ट शो अरुणिमा में मैं पंकज आपसे दोबारा मिलूंगा। तो इसी तरह सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। और अभी कुछ मिनट जो बचे हैं उसके लिए आप इस शो का ये गाना सुनिए और बस ऐसे ही इंजॉय करते रहिए।

0: संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 निर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में हिंसा में बदलने से 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आक्रामक और हिंसक बर्ताव किया। वे चेतावनी तथा कानूनी निर्देशों के बावजूद आगे बढ़े और रोक के आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने बताया कि घायल पुलिसकर्मियों की मेडिको लीगल जाँच चल रही है। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम तथा सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को

सुबह के 4:10 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी पंकज के साथ। इन दो गानों के बाद आपसे मिलता हूं। शुरुआत करते हैं जीवनधारा फिल्म के इस गाने के साथ SP बालसुब्रमण्यम की आवाज में।

0: अगर तुम ना होते मूवी का ये गाना आपने सुना था, गुलशन बावरा के बोल और आर डी बर्मन का म्यूजिक था। आज 21 जुलाई मंगलवार है और मैं पंकज अरुणिमा शो में आपके साथ हूँ। देखिए, समय को भी ना थोड़ा सा समय देना चाहिए ताकि वो हमारे लिए मंगल परिस्थितियां बना सके, यानी धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। तो जिंदगी को जी भर कर जीते रहिए और जो होना है वो तो होकर रहेगा ही। तो आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। खैर, अब इन दो गानों के बाद मैं मिलता हूँ आपसे, तो ऐसे ही इन गानों का मजा लेते रहिए और फिर से आपसे मिलता हूँ।
1: धीरे धीरे

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दिल्ली में समय बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, अभी मैंने स्टूडियो की खिड़की से देखा, उसमें बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। वाणी जयराम की आवाज़ में गुड्डी फिल्म से ये गाना था, गुलजार के बोल और बसंत देसाई का संगीत था। जब जिंदगी में अपने दम पर लाख जतन के बाद भी परिस्थितियां सही ना होना, और तब हमें ऐसा करना चाहिए, यानी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आपको पता है प्रार्थना में जो है वो बड़ा बल होता है जो असंभव को भी संभव कर देती है। बस प्रार्थना जो है वो सच्चे मन और अच्छी नीयत से होनी चाहिए, जिसमें किसी का भी बुरा ना हो। यकीन मानिए प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और पूरी भी की जाती हैं, इसलिए हर पल प्रार्थना करते रहिए, कुछ अपने लिए कुछ सबके लिए।

इस गाने की एक एक बात बहुत सच है और पता है मेरे बड़ों ने हमेशा मुझे समझाया है कि कभी भी किसी भी चीज का ना अहंकार मत करो क्योंकि जो अच्छा आपके पास है उसे हमें जरूरतमंदों को बांटनी चाहिए और ये बात सच भी है कि अहंकार जो है वो मनुष्य के पतन का कारण बनता है। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर अरुणिमा शो में मैं पंकज हूँ आपके साथ। अहंकार ने न जाने कितने लोगों को नष्ट कर दिया, इसकी ढेरों कथा कहानियां जो हैं वो हमें असल जीवन में भी देखने सुनने को मिल ही जाती हैं। इसलिए विनम्र और प्रेम से भरकर सबको सिर्फ प्यार बांटिए क्योंकि प्यार से ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं।

किशोरदा की आवाज में मशाल फिल्म से आपने ये वाला गाना सुना। और अब जो है अगले घंटे मैं पंकज भोर सुहानी शो में आपसे, यानी नेक्स्ट शो है ये, इसमें आपसे मिलूंगा क्योंकि और बड़ी सुबह होने वाली है। वैसे तो अभी मैंने स्टूडियो की खिड़की से बाहर जाकर देखा तो अभी दिल्ली में जो है बूंदाबांदी हो रही है, यानी बाहर का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा है और सुबह का नज़ारा तो होता ही हमेशा बहुत ही प्यारा, मन को खुशी देने वाला होता है। तो थोड़ी देर में सुबह 5 बजे से आप हिंदी और इंग्लिश में न्यूज़ सुनेंगे और फिर 5:10 पर मैं दोबारा आपसे मिलूंगा। अभी ये वाला गाना सुनिए, येसुदास की आवाज़ में। इस टाइम के लिए एकदम परफेक्ट गाना है फ्रॉम द मूवी हैसियत।

0: सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों पर सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बीच कल दो दिनों के सदन की कार्यवाही के कई बार बाधित हुई। हंगामे जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित कर दी गई और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारियों ने आक्रमण और हिंसक वार्ताओं किया, वे चेतावनी तथा कानूनी निर्देश के बावजूद आगे बढ़े और रोक के आदेशों का उल्लंघन किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वाले में पुलिस कर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 से ज्यादा प्रदर्शनकारी के घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने में पुलिस के सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन के सहयोग करने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में बारिश के जुड़ी घटनाओं में जम्मू संभाग में 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के क्षेत्र में भी ऐसे अगले 2 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 5:10 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है कार्यक्रम भोर सुहानी। मैं पंकज आपके साथ इस शो में रहूंगा। अभी के लिए शुरुआत करते हैं दो गानों से, रामलखन फिल्म से ये गाना आप सुनिए और उसके बाद दो गानों के बाद आपसे मिलता हूँ।

करते हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा वैसे इन सबके साथ ना मुझे ऐसा आपसे एक बात कहनी है कि देखिए हम सबको पता है एक बात समझनी चाहिए कि जिंदगी बीतेगी और बीत रही है, लेकिन इसे कैसे बिताना है ये आपके सकारात्मक एक्शंस पर डिपेंड करता है। तो जब बिताने ही है तो खुशी से क्यों ना बिताएं, है ना। इन दो गानों के बाद मैं पंकज आपसे फिर से मिलता हूँ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मेरे यानी पंकज के साथ भोर सुहानी शो में। ऐसे ही सुनते रहे।